0: एक बयान में मैक्सिको की आज़ादी और खुद मुख्तारी को उजागर किया है। क्लाउडिया शिनबान ने कहा है कि मैक्सिको एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुस्तकिल मुल्क है। ये किसी भी दूसरे मुल्क की सरपरस्ती या नो आबादी के मातहत नहीं है और ना ही कभी होगा। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि ट्रंप की जानब से हालिया दिनों में खलीज मैक्सिको और झील ओंटारियो जैसे जुग्राफियाई नामों के हवाले से उठाए गए इकदाम के बाद नक्शे के यह ताज़ा तरीन पोस्ट खत्ते के ममालिक के लिए एक सख्त सियासी पैगाम की हैसियत रखती है।
1: ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी इकतसादी जंग खलीज में ममनुआ बहरी इलाके की हौसला अफजाई कर सकती है। ईरान के सिक्योरिटी अहलकार मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि अमरीका की मुआशी जंग का जारी रहना खलीज में समंदरी ममनुआ इलाके के क्याम को मुतहरक कर सकता है। उन्होंने कहा कि तहरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ों और अड्डों के बारे में अपने मौक़िफ़ को बुनियादी तौर पर असर नौ मुनज़म कर लिया है। यह इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों फरीक एक दूसरे पर जून में तय पाने वाले माहिदे पर अमल दरामद में नाकामी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मज़कूरा माहिदा दुश्मनी को ख़त्म करने और आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोलने के ज़ेर मकसद तय किया गया था।
0: सरकारी हुकाम के मुताबिक रूसी ड्रोनों और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों के वसी पैमाने के कल शब के हमलों ने मुल्क भर के शहरों और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में दारुलकूमत केफ में कम से कम दो अफराद हलाक हो गए हैं। केफ के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा है कि हमलों में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 5 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 2 की हालत तशवीशनाक है। ड्रोन और तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों की लहर की तरफ से शहर को हदफ बनाने पर यूक्रेनी फजाइया ने पूरी शब हंगामी इंतबाह जारी किया। फजाई खतरे के अलार्म रात भर बजते रहे जब रूसी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरों ने कीव और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। हुकाम ने रिहायशियों से पनागाहों में रहने की हदायत की और फजाई दिफाई निज़ाम हमलों का जवाब देने की कोशिश करते रहे।
1: यूरोपीय सियासतदानों ने रियासी इंतखाबात में AfD की तारीखी कामयाबी पर तशवीश का इजहार किया है। इंतहाई दाएँ बाजू की AfD पार्टी का रियासत सैक्सनी एनहाल्ट में 43.8% वोट हासिल करके 83 में से 39 सीटें हासिल करने के बाद यूरोपीय सियासतदान बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। फ्रांस ने इस फतेह को इंतहाई तशवीशनाक इशारा करार दिया, जबकि पोलैंड और जमहूरिया चेक के सियासतदानों ने इंतहाई दाएँ बाजू की क़वतों के वसी पैमाने पर इजाफे से खबरदार किया है। जर्मनी की मरकजी धारे की जमातों ने कहा है कि वो AfD के साथ तआवुन नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि रियासत सैक्सनी एनहाल्ट में AfD की यह कामयाबी किसी एक रियासत में पार्टी की मजबूत तरीन कामयाबी है।
0: शुमाली कोरिया ने अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान की मुश्तरका फौजी मशकों की मजम्मत की और इनके नतायज से खबरदार किया है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान की तरफ से की जाने वाली 5 रोज़ा फ्रीडम एच फौजी मशकें फौजी इश्तियाल अंगेजी हैं और इनके मुकाबले जवाबी इकदाम किए जाएंगे। मस्कूरा मशकों में बैन अवी बहरी और फजाई हदूद में और जापानी अड्डों पर फजाई, बहरी, साइबर और मिसाइल दिफाई ऑपरेशन शामिल हैं। सियोल का कहना है कि ये मशकें दिफाई हैं और इनका मकसद शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल खतरात को रोकना है।
1: और फिनलैंड में एक शख्स पर 361 बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती के इल्ज़ाम में मुकदमा चल रहा है। फिनलैंड में एक शख्स को स्नैपचैट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए 9 से 15 साल की उम्र के 361 बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती का कसूरवार ठहराया गया है। फिनलैंड पुलिस ने कहा है कि उसके फ़ोन पर हज़ारों तस्वीर और वीडियो मनाजर मिलने के बाद मुशतबा शख्स ने बच्चों पर दबाव डाला कि वह उसे मुबाशरत का मवाद भेजें। मुलज़िम ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान कुछ इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

आपकी खिदमत में शॉर्ट वेव्स 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज पर सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। लीजिए आखिर में अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्की ने बोस्निया के कसाब रात को मिलादिज के लिए आखिरी रसूमात के अहतमाम पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मशरक वस्ता में जारी बहरानों की बुनियादी वजह इसराइल की इश्तियाल अंगेजियाँ हैं। फलस्तीन तहरीक मुजामत हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ की जाने वाली नस्लकुशी के शवाहद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी इकतसादी जंग खलीज में ममनुआ बहरी इलाके की हौसला अफजाई कर सकती है। समीन इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात इख्तिताम पसीर होती हैं। अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और बहुत खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।